ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की श्रावण माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है हमारी आज की प्रसारण सभा। अब आरंभ होती है

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और फिल्म संगीत गाने पुराने जमाने के आप सुनेंगे सुबह 10:00। फिल्म संगीत गाने नए तराने नए समय रहेगा सुबह 10:30 पर। युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00 और कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी समय रहेगा शाम 7:00 और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। श्रोताओं, रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा और कार्यक्रम दिल से सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आप सुनेंगे झलकी रब झूठ ना बुलाए। रात्रि 9:00 समय रहेगा दर्द भरे गीत फिल्म संगीत और श्रोताओं, रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:00 को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हो गई। सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और मध्यस्थता से जुड़े प्रतिनिधियों ने शांति, मध्यस्थता और विधि के शासन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। समापन सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद समाधान का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है जो विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करता है। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने न्याययान द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से न्याय तक आसान पहुंच, संवाद और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई। अगले वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन बहामास में होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के बाद जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के जागरूक करना और स्वस्थ तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: देशों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवसाद और अवसाद के साथ में नशा। किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है युवा शक्ति को सहेजने, संवारने और मोटिवेटेड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता। देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहें, इस दृष्टिकोण से पिछले एक साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला, लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, वो नशे से मुक्त हो, दूर रहें, इस दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर अभियान साबित होगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कल उदयपुर में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। उन्हें कोटा स्थित जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है, जहां वे प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 कल रात संपन्न हुए। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने में महिला खिलाड़ी पुरुषों से आगे रहीं। 13 स्वर्ण पदकों में से 8 महिला खिलाड़ियों के खाते में गए, जबकि 5 स्वर्ण पदक पुरुष खिलाड़ियों ने हासिल किए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस बार राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पैरा स्पर्धाओं में भी भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को सौंपी गई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सावन के पहले सोमवार पर बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जयपुर के साथ भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, जबकि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। इधर सावन के पहले सोमवार पर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में सुबह ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के दल विभिन्न पवित्र सरोवरों से जल लाकर शिव जी का विशेष अभिषेक कर रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अजमेर में भी शिवालयों में वातावरण शिवमय बना हुआ है। ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता।
2: तीर्थराज पुष्कर सहित जिले के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। झरनेश्वर, शांतिश्वर, पुष्कर, चित्रकूट धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर श्रद्धालुगणों द्वारा धर्म लाभ उठाया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर पुष्कर क्षेत्र में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोषों के साथ शिव भजनों पर नाचते गाते कांवड़ियों द्वारा पवित्र जल पुष्कर सरोवर से ले जाकर विभिन्न शिव मंदिरों में शिवाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भी भक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा को देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलमदादीच आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: इस बीच पाली के डाक विभाग ने सावन के अवसर पर डाकघरों में न्यूनतम शुल्क पर गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु डाकघर से पूजा अर्चना के लिए आसानी से गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं।
3: डाकघर के माध्यम से जो है गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस सावन में जो है शिव जी की विशेष आराधना गंगा जल के माध्यम से करें और गंगा जल जो है पवित्र गंगा जल डाकघर में बिक्री के लिए सभी जगह उपलब्ध है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें सावन में।
0: राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम रखे गए। अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। जिला पुलिस अधीक्षकों ने महिला पुलिस कर्मियों, महिला बीट अधिकारियों और कालिका पेट्रोलिंग टीम के साथ संवाद कर उनके सुझाव भी लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्री राम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहां सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना। श्रोताओं, भक्ति संगीत वंदना की पहली प्रस्तुति अनूप जलोटा की आवाज में।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM एंड 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत एल्बम सॉन्ग्स।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत एल्बम सॉन्ग्स। कलाकार थे सोनू निगम। FM एंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

आवाज़ें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार एस एच बिहारी, फिल्म प्यार झुकता नहीं।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म प्यार का मंदिर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म गुलामी से, जिसमें आवाजें दी है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा है गुलजार ने।

श्रोताओं लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 240-168 और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पाडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी, फिल्म आपके साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, गीतकार इंदिवर फिल्म कोयला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, फिल्म संगीत FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और प्रीतम की आवाज में, संगीत प्रीतम का, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, फिल्म ए दिल मुश्किल।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी, आवाजें आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की, संगीत प्रीतम का, गीतकार इरशाद कामिल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में, संगीत प्रीतम का, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, फिल्म दिलवाले।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया फिल्म दो लफ्जों की कहानी से, जिसमें आवाज दी है अरमान मलिक ने और गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

श्रुतों कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत ओंकार मिन्हास, रानी हजारिका और युवी की आवाज में, फिल्म जीना इसी का नाम है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम तरंग।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों थी आँखों में इशारा हो गया।
4: पंकज उदास की आवाज़, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उदास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

हॉस्टल पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना,

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्ति की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्र

0: राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों थी आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने पर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीट्स की प्रशंसा की। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने के कारण सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने खासाकोटी में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं को समझती है। श्री अठावले ने कहा कि राजस्थान में 3,84,00,000 जनधन खाते खोले गए हैं और 2,51,00,000 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। उन्होंने राजस्थान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित कर सर्वे कराने का सुझाव दिया और कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के लिए अपने आप को समर्पण करने से जुड़ा महादान है। राज्यपाल आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर का डर है। इसे भगाने और इस संबंध में लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने अंगदान के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री बागड़े ने अंगदान जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले चिकित्सकों और अंगदान जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आगामी पर्यटन सत्र के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र के तहत 31 दिसंबर तक की सफारी बुकिंग 1 अगस्त से की जा रही है। अग्रिम बुकिंग को लेकर देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह है। नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पर्यटक आसानी से अपनी सफारी बुक कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के पहले 2 घंटे में ही 40,000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग की, जिसमें 14,000 विदेशी पर्यटकों के टिकट बुक हुए। प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर करीब 20 लाख संदिग्ध अटैक प्रयासों, 150 से अधिक संदिग्ध आईपी और 2 करोड़ से अधिक फर्जी अनुरोधों को सुरक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोका। 200 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने स्वयं की ही आधिकारिक पोर्टल पर अपनी सफारी बुक की है। इसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड सहित कई देशों के पर्यटक शामिल हैं। भारी डिजिटल ट्रैफिक के बीच पोर्टल का सुचारू संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं। आज भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। जयपुर के प्रमुख ताड़केश्वर महादेव और झारखंड महादेव सहित झुंझुनू के प्रसिद्ध बावलिया के बगीचे स्थित शिव मंदिर, अलवर पिथौरागढ़ के त्रिपोलिया मंदिर, बालोतरा के हल्देश्वर महादेव, सवाईमाधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव और बारा के मनिहारा महादेव मंदिर में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव।

संगीतबद्ध किए गाने भी हैं। और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है, या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है? कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया? ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज में अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहां रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहां आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती है, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा जरूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तुरवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा गीत आप जरूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता, मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहां हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरी स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारी साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ानें, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक पहुँच जाती है। काश हम भंवरे की तरह रिश्तों की खुशबू पहचानना सीख पाते।

0: विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रम

0: मुंह में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: नैया
1: हाय। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। और भाई, बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, तो आपको लगे बस कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई, ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ,
2: और इस दूध में जो, जैसा आपने बताया, रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ,
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
2: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है,
1: हाँ,
2: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
1: बिल्कुल।
2: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी

0: संक्रमण का शिकार कई बार हो
1: हाँ
0: जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो।
0: जी, और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां मैं तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल सही।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व।

0: मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
1: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की डोलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना किसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
1: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
0: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित कर हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
5: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
6: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
5: अब हम उसे कटवा लेना।
6: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
4: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया।

0: दोपहर ढलने पर चार पांच आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
1: रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
0: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुढ़े की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है। चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
1: जी,
2: ये क्या बात है?
1: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
2: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
2: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
0: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: गई है ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
2: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
0: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
2: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
2: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
0: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो तीन तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
2: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
2: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
0: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब, ये अंगूठी एक तोले की है,

0: आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं। यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
1: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
2: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे। अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
1: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
3: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज।
4: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है। तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
6: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
5: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है, तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
6: बिल्कुल।
5: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
6: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
5: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
6: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी,
0: क्या क्या
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे

0: छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा, तो उनको भी लगेगा कि भी जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था, अगर ये सोचें। और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या
0: हाँ।
1: इसका आनंद होता क्या है,
0: बिल्कुल
1: ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ
0: हाँ।
1: पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पाकर के जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छूमंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है, वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा
0: हाँ।
1: लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक
0: हाँ
1: टाइम
0: हाँ
1: वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: वही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है,
2: बिल्कुल।
1: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
2: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
1: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
2: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
1: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
2: चलिए।
1: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने यूट्यूब पर देखकर सीखा है, और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
2: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
1: जी,
2: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों

0: और व्याख्यानों से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
1: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चट

0: चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम,
2: हाँ,
1: है ना। तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
2: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
1: बिल्कुल,
2: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
1: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
2: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
1: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
2: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसकी व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी जरूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसे भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
1: उसका जो मसाला है
2: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: वही, हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, मेरे हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुशी पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके?

0: क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग-अलग
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था,
0: जी जी
1: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
0: जी
1: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
0: जी
1: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: शुक्रिया एक बार
0: जी
1: और।
0: डॉक्टर साहब, ये जो आपने
1: जी
0: कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं,
1: जी
0: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
1: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
0: जी
1: कांच की,
0: जी
1: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके
0: जी
1: पीछे लेंस रहती है। हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
0: जी
1: उसके बाद पीछे का पर्दा है
0: जी
1: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
0: जी
1: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
0: बिल्कुल
1: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया।
0: जी
1: अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
0: जी
1: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक कि अपनी जिंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा
0: जी
1: है। एक
0: जी
1: सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
0: जी
1: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
0: अच्छा
1: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
0: जी
1: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
0: और ये
1: रिजल्ट्स आते
0: सभी
1: हैं,
0: जांच में पता चल जाता है
1: जांच में
0: कि
1: पता
0: हो
1: चल
0: रहा
1: जाए।
0: है।
1: या ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है। जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है। 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
0: इसकी
1: हैं।
0: क्या वजह हो सकती है?
1: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो
0: अच्छा
1: आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है, मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
0: जी
1: जाए किसी को,
0: जी
1: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
0: जी
1: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं देखा है, मोतिया बढ़ गया है।
0: जी
1: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
0: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद

0: का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
1: पक्का है
0: जी,
1: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
0: अच्छा,
1: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
0: जी,
1: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
0: पूरी जिंदगी
1: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है, किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से, अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
0: जी
1: शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, इतना अर्सा हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना।
0: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
1: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था।
0: अच्छा,
1: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
0: आजकल ऐसा नहीं है?
1: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
0: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
1: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है।
0: जी,
1: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस रहे, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको तोड़ के
0: तो
1: निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
0: जी जी,
1: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
0: करेक्ट।
1: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
0: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
1: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है।
0: जी,
1: क्योंकि क्या होता है, वो एक पके हुए फल की तरह, पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
0: बिल्कुल,
1: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
0: जी बिल्कुल,
1: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
0: जी,
1: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहां गिरेगा, आंख में जगह कहां है,
0: बिल्कुल,
1: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर

0: बहुत बढ़ जाएगा।
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का? इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सह लेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत जरूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से, या दुर्घटना के वजह से, या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें, वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना, आंख
1: जी
0: का
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है,
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्रदान करो, या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले, तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है, क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था, विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं,
1: जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है, वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो,
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह है, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये फैक्ट्रियां
1: फैक्ट्रियां हैं
0: हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए,

0: 50 रुपये का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेठ नहीं देता, सेठ नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेठ नहीं देगा। आप 50 रुपये, आप जाके कहीं पे भी 50 रुपये उड़ा देते हो, आँख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद नहीं
0: ग्लासेस की
1: कर
0: तरह।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूँ कि ज्यादातर होते, कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ, कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा, वो गॉगल पहनता है, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: जी।
0: उसकी आंखों में उड़ता है,
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजुरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर।
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग,
0: फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं।
0: ना ना ना, नो नो नो, नहीं वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है,
1: जी जी जी
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
1: हाँ
0: कहीं
1: वो
0: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया हो?
0: हाँ काफी टाइम होता है, काफी
1: जी
0: टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे,
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है,
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
0: जरूर
1: से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात
0: जरूर।
1: करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आंख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीपे।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
0: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी
0: ऊपर?
1: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख को
0: जी
1: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं निकलती।
1: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए, जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं नहीं आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं हम, नेचुरली इसको फाइट करेंगे। मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 पीएचडी जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
0: जी जी,
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
0: लड़कों को भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए,
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस,
1: वहां पे लगा, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
0: हाँ,
1: ये सबसे

0: मेरी विनती है, जितना हो अपने आप को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आपको।
1: जी
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं। हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है। बहुत
1: जी।
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है। नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता। वेरी सिंपल।
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी।
1: और
0: और
1: ये
0: मुझे
1: हमें
0: कहा
1: पता
0: गया
1: नहीं
0: है
1: था कि ये
0: कि
1: खतरनाक।
0: योग में ये करते हैं। मैंने, आई
1: हाँ
0: टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है, आंख
1: जी
0: बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है। आप
1: हाँ,
0: रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे नहीं
0: आंखों की
1: मारने।
0: वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं आप? वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या? आंख बंद कर रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आपको आराम आ रहा है।
1: जी
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी
1: सही
0: वाली
1: है
0: रखेंगे।
1: सही है
0: तो ठंडा क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना,
1: जी
0: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं आप? बर्फ लगाते हैं ना,
1: जी
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं वहां पे। हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना? आपको लग गया,
1: तो
0: आप
1: कुछ
0: गिर
1: ठंडा
0: गए, तो
1: लगा
0: पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना।
1: जी
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए। आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम, नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है। क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी,
1: है
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट।
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर।
1: खामोशी फिल्म का गाना। हमने
0: हाँ,
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था,
0: जी,
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी,
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या, रेटिना ने अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा

0: पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
1: जी,
0: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है, ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं, इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन
1: जी
0: के द्वारा।
1: जी जी
0: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे
1: जी
0: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया।
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी का बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी। अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई
1: जी
0: डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी
0: ठीक है, इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वॉज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है।
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी में हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारण ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया, एक्स्ट्रा सेलर एरिया, वो इंट्रा सेलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो
1: तो ब्लड
0: लीकेज किस
1: निकल
0: चीज
1: आएगा।
0: का, ब्लड निकल आता है,
1: जी
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है, वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है, वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी, और
1: बिल्कुल
0: ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन, इंजेक्शन, ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है।

0: जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर।
1: जी
0: डायबिटीज की दो ही चीजें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है।
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है।
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है,
1: जी
0: ये क्योर नहीं होती
1: बिल्कुल
0: अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।
1: जी
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार, ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी रहे। दो अलग अलग चीजें हैं ना,
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ, एक और चीज जो लोगों को देख, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे। सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल। ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आके वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है, काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है?
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है। डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस। तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
0: जी जी।
1: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
1: लक्षण कम दिखाई देता है।
0: अच्छा,
1: और कोई नहीं?
0: जी,
1: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
0: जी जी,
1: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन

0: करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं,
1: जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में सभी चीजों में, आप भी जानते
1: बिल्कुल
0: हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में टेक्नोलॉजी हर 2 3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है,
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी,
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है,
1: ये भी कमाल की बात है,
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस वो
0: वर्चुअल
1: तो
0: इमेज
1: हाँ
0: है, अरे वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधे
0: हम
1: होते
0: आप एक
1: हैं
0: दूसरे को देख रहे हैं क्या हम उल्टे हैं, अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती, अरे क्या यार,
1: कमाल है
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका हूं
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव केप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते,
1: है यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर
1: सेल्फ
0: डालिए,
1: मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें, जितना सेल्फ देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी,
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू या मिमिकिंग अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस करें वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती, लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है,
1: सही कह रहे
0: हाँ
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी,
0: ओके okay? लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया, मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक, शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी, तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है,
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे, टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है, तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैं

0: बीमारियों के बारे में आपने बातें की,
1: नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: सेहतनामा
0: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, व्रत उपवास तो हम करते ही हैं, अलग अलग धार्मिक आस्थाओं व विश्वास के अनुसार। इन्हीं में सावन का महीना भगवान शिव के सावन सोमवार को लेकर यूथ में काफ़ी लोकप्रिय है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में जो सभी सोमवार है बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखकर 17वें सोमवार को उद्यापन करने की परंपरा रही है। दोस्तों, इसे लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। अग्नि पुराण और पद्म पुराण के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुआ समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। मंथन से जब हलाहल नामक भयंकर विष निकला तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में रख लिया। जो विष का प्रभाव था उससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र जल और

दूध चढ़ाया। इसी कारण सावन में शिव जी पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन परंपराओं का महत्व, स्थूल न होकर पूरी तरह आध्यात्मिक और आंतरिक परिवर्तन से जुड़ा है। दृष्टिकोण अगर हम बात करें विस्तृत रूप से, तो निश्चित रूप से ये समय परमात्मा द्वारा आत्माओं के शुद्धिकरण का प्रतीक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी आधार पर अलग अलग परंपराओं के अनुसार लोगों में व्रत करना, उपवास करना और उनकी पालना करने का जो संकल्प है वो चलता है। साथ ही एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण जब चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, तो उनका जो तेज है उसको खत्म दिन ब दिन इस रोग की वजह से हो रहा था। तब उन्होंने सावन के महीने में शिव जी की घोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और नया जीवन दिया। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा भी, और सोमवार का दिन चंद्रदेव का भी होता है, जिससे कि इस दिन शिव पूजा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, उपवास और उसका असली अर्थ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो मन और बुद्धि का व्रत कहा जाता है। दोस्तों, उप का अर्थ है नज़दीक और वास का अर्थ है रहना। आध्यात्मिक अर्थ है अपनी बुद्धि और मन को ऊपर रहने वाले परम पिता शिव के सानिध्य में हमेशा लगाना। इस दिन केवल भोजन का नहीं बल्कि मन के बुरे विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे तामसिक विकारों को छोड़ने का पक्का व्रत लिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो सृष्टि चक्र है उसमें चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है और यही चंद्रमा शिव के मस्तक पर शोभित होते हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा के होने का अर्थ है परमपिता शिव की याद से हमारा मन पूरी तरह शांत, शीतल और वश में हो जाता है। सोमवार का व्रत हमें ये याद दिलाता है कि हम अपने मन के गुलाम न बने, बल्कि ज्ञान और राजयोग के द्वारा मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। दोस्तों, शिव जी पर बूंद बूंद जल चढ़ाना, परमात्मा की याद में निरंतर मन की एकाग्रता बनाए रखने का प्रतीक है। ये कोई भौतिक वस्तु चढ़ाने के बजाय अपनी आत्मा की पवित्रता और अपने तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों का भगवान शिव को सौंपने का सूचक है। कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाना। इसके साथ ही दोस्तों, निश्चित रूप से जलाभिषेक शिव जी पर इसी रूप में बूंद बूंद करने की परंपरा आज तक चली आ रही है और हम उसको फॉलो भी करते हैं। ये तो बात हुई सावन सोमवार और शिव जी से जुड़े सावन माह की। अब हम चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करते हैं जल संरक्षण की, कैच द रेन अभियान की। निश्चित रूप से इस अभियान की सफलता पूरी तरह से देश के युवाओं की ऊर्जा और उनकी भागीदारी पर निर्भर करती है। युवा अपनी तकनीक, सोशल मीडिया की ताकत और सामुदायिक प्रभाव से जल संकट को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। निश्चित रूप से जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, उन्हीं में मौजूद है। दोस्तों, युवा अपने कॉलेजों और स्थानीय क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों और रैलियों के जरिए पानी बचाने का संदेश दे सकते हैं। उस प्रकार की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए साथ ही रील्स, इन्फोग्राफिक्स और कैच द रेन जैसे हैशटैग का उपयोग करके भी हम सब जल संरक्षण की आवश्यकता को वायरल कर सकते हैं, और उस हद तक जो जागरूकता आज की आवश्यकता है वो हम उत्पन्न की जा सकती है हमारे द्वारा इस प्रकार की इनिशिएटिव लेकर। नेहरू युवा केंद्र संगठन NCC और NSS से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जाकर लोगों को बारिश का पानी सहेजने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं और हर समय अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत कर भी रहे हैं। साथ ही अपने गांव और कस्बों में पुरानी बावड़ियों, तालाबों, कुओं की सफाई और मरम्मत के लिए श्रमदान भी किया जा सकता है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में भी होना चाहिए।

हम सब अपने घरों, स्कूलों, कॉलेजों की छतों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की पहल भी कर सकते हैं। वर्षा के पानी को जमीन के अंदर रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का जिम्मा भी उठाया जा सकता है, जो निश्चित रूप से हमें समय समय पर अलग अलग उत्सवों के माध्यम से उठाना चाहिए। इंजीनियरिंग और आईटी के छात्र ऐसे ऐप्स या सेंसर बना सकते हैं जो पानी की बर्बादी और लीकेज को तुरंत पकड़ सके। दोस्तों, युवा जल शोधन और रिसाइकलिंग के लिए सस्ते और घरेलू मॉडल भी विकसित कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की टेक्निक्स बहुत काम आएगी और जो प्रशासन है उसका भी सहयोग हम कर पाएंगे। अपने मोहल्लों या गाँव में पानी की जो खपत है उसे ऑडिट की जा सकती है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने असाइनमेंट्स में, और कहीं पानी व्यर्थ तो नहीं हो रहा, व्यर्थ नहीं बह रहा, इस प्रकार का आंकलन करके उस ऑडिट की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा सकता है और लोगों द्वारा बताया जा सकता है। साथ ही जो स्थानीय पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनके साथ मिलकर सरकारी जल योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाने में भी काफ़ी हद तक मदद की जा सकती है। और समय समय पर जो कॉलेज के छात्र हैं, जो कॉलेज से अपर स्टेज वाले युवा हैं या फिर छोटे बालक हैं, उनके द्वारा मदद ली जा सकती है और उनकी हेल्प से काफ़ी हद तक जो ज़मीनी स्तर पर इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं जो परिवर्तन के सूचक होंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई जल संरक्षण और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी। अब हम चलते हैं संगीत की दुनिया में, सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चट गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अनगिनत लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जला जला कर बुझ गए थे दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती, रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये सॉन्ग।

दोस्तों, भारत का अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। भारत योग को पदक खेल के रूप में बढ़ावा देगा। राष्ट्रमंडल खेल महासभा ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के जो आयोजन हैं उसके स्थल के रूप में अहमदाबाद की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। ये भारत के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके कारण शताब्दी खेलों में जो योग है उसको पदक विजेता खेल के रूप में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी शुरू हो गए हैं। भारत का लक्ष्य है 2010 के नई दिल्ली खेलों से सीख लेते हुए विवाद मुक्त आयोजन करवाना, साथ ही मेजबानी के अधिकार पर निश्चित रूप से बड़े स्तर पर जो है प्रसन्नता व्यक्त की गई है और खेल भावना के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया है। भारत ने अक्टूबर 2030 में इस आयोजन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा, जिसकी तारीखें राष्ट्रमंडल खेलों के सहयोग से अंतिम रूप से घोषित की जाएगी। मेजबान देश अधिकतम 2 नए खेलों का प्रस्ताव दे सकते हैं। भारत योग को प्रस्तावित करने पर विचार कर रहा है, जिसे 2026 के एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, योग को इसकी अंतर्राष्ट्रीय अपील तथा भारत की सौम्य शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। ये तो बात हुई राष्ट्रमंडल खेलों की, अब सुनते हैं ये गीत।

अब युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मेहनत चुप रहना सिखाती है, शोर तो खाली हाथ मचाते हैं, जो कोशिशों में जागे रात भर उन्हीं के तो सपने सुबह सच होके चले आते हैं। चिरमी चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी प्यारी सखियों को सुनीता चौधरी का निभरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, अभी आज तारीख 3 हो गई है, यानी अगस्त महीने का आज 3रा दिन है और आपसे हम चर्चा करेंगे 2 दिन पीछे की और 4 दिन आगे की, यानी कि अगस्त माह के पहले सप्ताह की। बिल्कुल सखियों, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए सखियों स्तनपान के

महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ ही महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करना, साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ये सभी इस सप्ताह को मनाए जाने के उद्देश्य हैं। साथ ही साथ कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि फीडिंग कराने वाली जो महिलाएं हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सखियों, माँ के दूध को अक्सर शिशु का पहला टीका कहा जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का बिल्कुल सही संतुलन होता है और जन्म के बाद बनने वाला जो पहला दूध है जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये गाढ़ा और पीले रंग का होता है और बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं सखियों कि बच्चे के पैदा होने के बाद जल्दी से जल्दी उसको स्तनपान करवाना चाहिए। इससे शिशु को एंटीबॉडीज मिलती है, यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो यहीं से शुरू होती है। बच्चा जब जन्म लेता है सखियों, उस समय उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, ये उसको माँ का जो पहला दूध बच्चा पीता है यहीं से उसको मिलनी शुरू होती है और उसके बाद उसके शरीर में बनना शुरू होती है। इसीलिए सखियों, ये जरूरी है कि जन्म के बाद एक घंटे के भीतर भीतर बच्चे को स्तनपान करवाया जाए। इस पहले घंटे को ही सखियों गोल्डन आवर भी कहा जाता है और ऐसा इसीलिए कि ये जो पहला गाढ़ा दूध है ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और इसके बाद जो पहले 6 महीने होते हैं बच्चे के उसमें केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, दूसरा और कुछ भी नहीं। और 6 महीने बाद में पौष्टिक पूरक आहार के साथ साथ 2 साल या फिर जब तक दूध आए तब तक स्तनपान बच्चे का जारी रखना चाहिए। सखियों, जो विश्व स्तनपान सप्ताह है 2026 यानी इस वर्ष के लिए, इसका विषय रखा गया है जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान कारगर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य सखियों सफल सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ करना है और इसका लक्ष्य हर जगह स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन करना है। सखियों, ये पहल जो है उसे हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर शिशु मृत्यु दर में सुधार लाने में भी ये सहायक होगी, यानी छोटे बच्चे जो कि जन्म लेने के कुछ समय बाद ही ऐसे में मृत्यु हो जाती है उनकी, तो इस दर में भी जो है गिरावट आ सकेगी यदि हम ये काम करते हैं। और ये बात तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ के दूध को तो बच्चे के लिए अमृत कहा जाता है, अगर उसे उत्तम और सर्वोत्तम कहें तो ये अतिशयोक्ति होगी, हम कह सकते हैं अमृत समान होता है। तो जब तक संभव हो सके तब तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। जैसे ये इसके अंदर ये भी होता है सखियों कि कई बार जो पहली बार माँ बनी है उनके साथ में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो ऐसे में जरूरी है कि घर की जो बड़ी हैं समझदार हैं महिलाएं वो उसकी सहायता करें और उसको स्तनपान करवाने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं हो कि समस्या को देखते हुए या अगर छोटा मोटा कोई कष्ट हो रहा है तो उसको देखते हुए वो इस चीज से मना करने लगे कि नहीं मैं फीडिंग नहीं करवा सकती, ये नहीं करें, उसको थोड़ा प्रेरित करें और उसकी हेल्प करते हुए बच्चे को स्तनपान जरूर करवाएं। सखियों, ये बच्चे के लिए जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही स्तनपान करवाने वाली माताएं जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, वो भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हैं और एक भावनात्मक जुड़ाव और लगाव भी माँ और बच्चे दोनों का बनता ही है। सखियों, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की जो शुरुआत है वो वर्ष 1992 में हुई थी और WABA, WHO और यूनिसेफ ने साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की थी। सखियों, हर छोटा कदम एक स्थायी सकारात्मक बदलाव लाता है, इसी सोच के साथ हमें किसी भी काम को स्वीकार करना चाहिए और एक छोटी सी शुरुआत के साथ में नया कदम उठाना चाहिए। रुकेंगे कार्यक्रम में और सुनेंगे पहला इस कार्यक्रम का खूबसूरत सा गीत।

जी बिल्कुल, आपके कानों तक पहुंची होगी ये दो पंक्तियां और जरूर आपके दिल में, आपके दिमाग में किसी दोस्त का ख्याल आया ही होगा। बिल्कुल ऐसा होता है ऐसे, क्योंकि जिंदगी में एक दोस्त या एक सहेली ऐसी होती है जो बहुत खास और बहुत पास भी होती है, और ये होना बहुत जरूरी भी होता है। सखियों, एक जो इंसान जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं, अपनी सखी सहेली कहते हैं, वो हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। इसके साथ ही आप अपना सुख दुख भी आसानी से साझा कर सकते हैं। सखियों, ऐसा होता है कि हमें बात करने से पहले सोचना पड़ता है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ औपचारिकताएं अभी भी बाकी हैं। लेकिन जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो वहां पर कोई औपचारिकता नहीं होती और हमें जो बोलना होता है वो हम बेझिझक बोल पाते हैं, और जिस भाषा में बोलना होता है, जैसे भी ऊटपटांग बात करनी होती है, हम आराम से कर लेते हैं। वहां पर हमें किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, यानी सोचने समझने की भी जरूरत नहीं होती। यानी कि बात करने का मजा तो तभी आता है जब सोच समझ के बात नहीं की जाए, और ये तभी संभव है जब हम दोस्तों के साथ या अपनी सखी सहेलियों के साथ बतिया रहे होते हैं। तो जब हमारे पास ऐसा कोई होगा तभी तो ये चीज भी संभव हो पाएगी। सखियों, हमारी जिंदगी में जो रिश्ते हैं, आज अगर हम सोचें तो हमारे पास किसी भी रिश्ते की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना जी नानी जी भी हैं, मामा जी हैं, मामी जी हैं, मासी है, बहन है, भाई है, भाभी है, जीजा जी हैं, मतलब बहुत सारे रिश्ते, एक लंबी लिस्ट है। और इनसे जुड़े हुए रिश्ते, इनके बाद जो इनके बच्चे होते हैं उनसे भी हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये रिश्ते हमें कैसे मिलते हैं? इस परिवार में जब हमारा जन्म होता है तब हमें ये सारे रिश्ते जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी न किसी के कुछ न कुछ लग रहे ही होते हैं, और साथ ही उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भी हमारे साथ कोई न कोई रिश्ता हो ही रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि कुछ समय बाद में जब वैवाहिक संबंध तय हो जाते हैं तो बाकी के रिश्ते हमें शादी के साथ मिल जाते हैं, जो कि हमारे ससुराल से जुड़े हुए होते हैं। अब ये सारी अगर रिश्तों की बात करें तो ये सारे औपचारिक रिश्ते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना ही होता है। लेकिन अगर हम दोस्ती की बात करें सखियों, तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद से बनाते हैं। जो हमारा दोस्त है उसे हम खुद चुनते हैं। यानी हम अगर देखें तो हमारे माता पिता सबके लिए, सबके माता पिता हमेशा बेस्ट होते हैं, सबके भाई बहन सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई किंतु परंतु होती है तो आपके पास में उनको चुनने की या उनको छोड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती या कोई भी चॉइस नहीं होती है। जो हैं वही रहेंगे। आप उनके साथ बोलचाल बंद कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के बाद आना जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता तो फिर भी वही रहेगा, नाम उनका वही रहेगा और माता पिता और भाई बहन वही रहने वाले हैं। भले ही हम रिश्ता निभाएं या नहीं निभाएं ये एक अलग बात है, लेकिन दोस्ती की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं कि हमें किसके साथ में दोस्ती करनी है, और उसके बाद में उसको निभाना भी हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस हद तक निभाना चाहते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने किसी के साथ थोड़ी देर बातचीत वगैरह की और हमें अच्छा लगा, हमने दोस्ती भी कर ली, और कुछ टाइम बाद में बचपन की भी कई सखियां होंगी, कई दोस्त होंगे जो आज भी साथ चल रहे होंगे, साथ निभा रहे होंगे, कॉलेज टाइम में भी साथ रहे होंगे, तो वो गहरी पुरानी दोस्ती तो है ही। लेकिन अगर आप नई दोस्ती भी किसी के साथ करते हैं मान लीजिए, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है कि भाई आपसी सामंजस्य भी अच्छा है, बातचीत भी अच्छे से हो रही है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर कहीं किसी मोड़ पर कुछ ऊंच नीच होती है, कोई बात हो जाती है, तो हम एक झटके में उस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। यानी उस दोस्ती को हम खत्म कर सकते हैं, उस दोस्त को तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जब हम चुनाव करें तो हम सोच समझ के उसके बाद चुनाव करें कि वो व्यक्ति सही हो। अब हम ये सोचें कि चुनाव करें कैसे, तो आप देखिए कि जिससे भी आप दोस्ती करते हैं, तो मतलब पहली बात तो ये कि जिस भी इंसान से जुड़ें वो आपसे स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा हो, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं हो।

0: अगर कोई मतलब पूरा नहीं होता है तो ऐसे में वो आपके साथ दोस्ती बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं। तो जहां मतलब है, स्वार्थ है, वहां पर सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती। ये चीज आप ध्यान में रखें। उसके बाद में ये कि जब हम बातचीत करते हैं तो वो आराम से सुने और आराम से समझे, क्योंकि सखियों दुनिया आपकी बातों को सुनना बंद कर सकती है। हो सकता है आपको चुप रहने के लिए कह दिया जाए, लेकिन जो आपकी सहेली होगी, जो आपके दोस्त होंगे, वो आपको कभी नहीं कहेंगे कि चुप रहो। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप परेशान हैं तो भी वो साझा करेंगे। आप खुश हैं तो उस खुशी को दुगना भी करेंगे। आप जब भी परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को आपके साथ में शेयर करेंगे और आपसे कहेंगे कि जो भी कहना चाहते हो खुलकर पूरी बात कह दो। और जो सच्चा मित्र है वो केवल सुख दुख में हमारे साथ नहीं खड़ा रहता, बल्कि सही और गलत में हमें फर्क भी बताता है। हम अगर गलती कर देते हैं तो वो टोकता भी है और साथ ही साथ सही रास्ता भी दिखाता है, उस गलती को सुधारने के तरीके भी बताता है। सखियो ये भी एक चीज है कि भरोसा हम उस पर कर सकते हैं बिना किसी मतलब के जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है। सखियो जीवन में अच्छा और सच्चा दोस्त समझना और चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होता है। और सही गलत में फर्क जानना हमारे मानसिक सुकून और भविष्य के लिए आवश्यक भी होता है। हम कई बार होता है परेशान होते हैं, ऐसे में किसी सहेली को फोन करके उससे बात करके काफी सांत्वना सी हमें मिल जाती है, काफी सुकून हमें मिल जाता है। जब भी मुश्किल वक्त आता ना सक्यों, तभी तो सच्चे दोस्त की पहचान भी होती है। सक्यों जब दुनिया आपकी बात नहीं सुनती तो अच्छा दोस्त शांत रहकर आपकी बात सुनता है, आपकी बुरी आदतों और अहित से भी आपको दूर रखता है। ये चीज सच्ची दोस्ती की पहचान होती है कि वो आपका हर स्थिति में साथ निभाता ही है, चाहे सुख हो या दुख हो। सखियों हम कार्यक्रम का अगला गीत सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। उससे पहले दोस्ती के लिए दो लाइन कहना चाहेंगे। भरोसे की नींव पर दोस्ती की इमारत खड़ी होती है, खोल के देखना जिंदगी की किताब कि दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

सिक्किम बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही लू और गर्म हवाओं की तो विदाई हो गई है, लेकिन इस चिपचिपी बारिश वाली गर्मी में कई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। दूसरी सावधानियों के साथ साथ यहां पर इम्यूनिटी बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है ताकि हम बीमार नहीं पड़े। सिक्किम बारिश की दस्तक के साथ मौसम में बदलाव, चिपचिपी नमी वाली गर्मी और फिर अचानक बारिश, ये केवल मौसम को ही नहीं बदलता बल्कि हमारे शरीर पर भी असर डालता है। सिक्किम इस वक्त शरीर में जलन और गर्मी कम होने लगती है क्योंकि बाहर लू नहीं चलती, लेकिन नमी और पानी जो है वो बैक्टीरिया और फंगस बढ़ाते हैं। ऐसे में सही खान पान ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। सिक्किम अगर आप इस मौसम में बीमार नहीं होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ताज़ा खाना खाने की आदत डालें और स्पेशली ये घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। सीजनल जो भी फ्रूट और सब्जियां मिलते हैं उन्हीं को अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि बाजार में कई बार ऐसा भी होता है कि जिन फ्रूट्स का सीजन नहीं है वो भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन उनको खाने से थोड़ा दूर रहें। सिक्किम इन दिनों आंवला अगर मिलने लगे तो ज़रूर खाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कच्चा ही खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिक्किम इस मौसम में अपने खाने में काले मिर्च को ज़रूर शामिल करें, आप चाय, दूध या फिर सलाद के साथ इसको ले सकते हैं। सिक्किम रोज के खाने में हल्दी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, इससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम नहीं होती है बल्कि बूस्ट होती है। और अगर संभव हो तो एक गिलास दूध में आधा पौन चम्मच हल्दी को मिला के ज़रूर रात को सोने से पहले पीकर सोएं, ये भी बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। इसके अलावा सिक्किम जिन लोगों को इस मौसम में सर्दी, जुकाम, कफ या अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है तो उनको अदरक ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं तो आपको शरीर के साथ साथ दिमाग भी रिलैक्स मिलेगा। सिक्किम फेफड़ों में जो कफ जम रही होती है उसके लिए भी तुलसी फायदेमंद होती है। सिक्किम बारिश के दिनों में मुलैठी का भी प्रयोग करना चाहिए, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, गले की खराश को ख़त्म करती है और मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ दिमाग को एकाग्र करने में भी मदद करती है। इन दिनों में सिक्किम एक बात का ख्याल रखें कि इन चीजों के अलावा पानी जो है उसको उबाल के उसके बाद ठंडा करके ही पिएं। बहुत देर से अगर कोई फल कटे हुए रखे हैं तो उनको नहीं खाएं। सलाद भी आप लेती हैं तो उसको भी तुरंत ताजा काटकर ही सेवन करें, और स्ट्रीट फूड, जंक फूड, चाट या तली भुनी चीजें जो हैं इनको खाने से परहेज करना चाहिए। अगर खाने के शौकीन हैं, चटकारे लेकर मजा लेना चाहते हैं बारिश के मौसम में पकौड़े और चटनी का, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा श्रीमती जी को कष्ट दीजिए। और हमारी प्यारी सखियों, आप भी घर पर बनाइए चाट पकौड़ी और सारे घर वालों को खूब स्वाद के साथ खिलाइए इस गाने को सुनते हुए।

0: खुद को साबित करना है तो आज और अभी शुरू करो, क्योंकि फिर कभी बाद में या कल कभी किसी का नहीं आता। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अपनी सखी सुनीता चौधरी को, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।
1: अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
2: खेल खिलाड़ी,
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर

0: छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिल्मी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का पहला नगमा आशा भोंसले की आवाज में है। फिल्म का नाम वक्त है।

प्रोग्राम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है, फिल्म का नाम ब्लैकमेल। यादों के आईने में अश्क तुम्हारा है, जीवन है सोना सिर्फ यादों का सहारा है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिएगा रामलाल निर्मल और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: कालूराम प्रजापति के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम बाटे के स्वर का समय अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान अंगदान जागरूकता में देश में पहले स्थान पर, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। RUIDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार। और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल, समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान जागरूकता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। आज नई दिल्ली में 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को अंगदान संकल्प अभियान में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान की निदेशक डॉ चित्रा सिंह को प्रदान किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने से ये उपलब्धि मिली है। देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया है। साल 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुरू होने के बाद ये उपलब्धि हासिल की गई है। आज नई दिल्ली में 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़कर सालाना 20,000 से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले एक साल के जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार

0: ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा, और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
1: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। RUIDP परियोजना निदेशक हरिमोहन मीणा ने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम 5 से 11 अगस्त तक 84 शहरों में होगा, जिसमें RUIDP पांचवें चरण में होने वाले कामों की जानकारी देगी। साथ ही प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन शहरों के विकास के लिए 9,500 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करेगी। इस चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर तथा 28 शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शामिल किया गया है। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा वंचित और पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये कुल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23% है। राज्य के 4,35,00,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। श्री गोदारा ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल से 88,00,000 से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को NFSA में शामिल किया गया है। इससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मॉनसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है। इससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। श्री अठावले ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गांवों के गरीब और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का प्रावधान करना चाहिए। इससे रोजगार के लिए गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गांव में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा ना रहे, ये हमारी सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि उसी तरह हम काम कर रहे हैं।
1: श्री अठावले ने लोकभवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े से भी मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में विभिन्न कार्य समूहों की बैठक हो रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। वहीं जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 21 और 22 अगस्त को होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर पर्यटन क्षेत्र में AI के उपयोग और सस्टेनेबल टूरिज्म पर चर्चा की जाएगी।
3: G20 की अपार सफलता, सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इन्वाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है, भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति इस सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल एट AIR न्यूज अंडरस्कोर जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में इस बार मॉनसून की अधिक सक्रियता नहीं रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। वहीं बाड़मेर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर सहित 16 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और उदयपुर सहित 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के साथ सूरतगढ़, सादुलशहर और श्रीकरणपुर में अच्छी बरसात हुई। भरतपुर में भी दोपहर बाद घनघोर घटाएं छा गई और देखते ही देखते झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। नदबई, उज्जैन, भुसावर, बयाना और रूपवास इलाकों में जोरदार बारिश हुई। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज कम दबाव का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मॉनसून टर्फ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल फरवरी महीने से होगी। इसके लिए प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला जनगणना पुस्तिका और प्रशासनिक एटलस को जल्द अपडेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिलों, तहसीलों और कस्बों की तादाद में बढ़ोतरी को देखते हुए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में ये दस्तावेज काफी अहम हैं। मुख्य सचिव ने जनगणना के पहले चरण के तहत हुई मकान सूचीकरण और गणना पर संतोष जताया। उन्होंने 17 अगस्त से पहले भूस्थानिक और डिजिटल टूल्स के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। चूरू जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 13 श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना सुजानगढ़ क्षेत्र में बोबासर पुलिया पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर से हुई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार ये लोग कोलकाता के एक ही परिवार से हैं और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए थे। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद पुष्कर धाम के लिए रवाना हुए थे। घायलों को सुजानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर आज समूचे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। व्रत, उपवास और जप तप से लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। शिवालयों में अल सुबह पट खुलते ही अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और समूचे वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। जयपुर, कोटा, उदयपुर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू सहित सभी जिलों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती हुई। इसी तरह रंगीला महादेव, रोजगारेश्वर, चमत्कारेश्वर मंदिरों में लोगों का सैलाब उमड़ा। उदयपुर के प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्राओं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग तथा प्रवेश, निकास और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दुर्घटना और आपात स्थिति में पीड़ितों तक जल्द पहुंचना आसान होगा। खासकर दूर दराज और संकरी जगहों में लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान अंगदान जागरूकता ने देश में पहले स्थान पर नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। आरयूआईडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों

0: में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल, समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन नमस्कार। ये आकाशवाणी अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को केंद्र सरकार की डेवलपमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पद्मिनी महल में नई हिस्ट्री गैलरी, आधुनिक संग्रहालय, वॉकवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। रेल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि नई रेल लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रारंभिक सर्वे में चित्तौड़गढ़ और देवारी में स्टेशन बनने की संभावना है। वहीं चित्तौड़गढ़ अजमेर रेलखंड पर कार्य प्रगति पर है और चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन की स्वीकृति प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से जिले की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर विद्युत गृह में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए एटीएस कोटा और इमरजेंसी रिस्पांस टीम की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को निष्क्रिय किया और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों निम्बाहेड़ा में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली, सड़क, पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। बैठक में जल जीवन मिशन, विद्युत अवसंरचना, सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, टीबी मुक्त अभियान और जन औषधि केंद्रों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रदेश के बालोतरा जिले के पचपदा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चित्तौड़गढ़ जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर आयोजित रोजगार उत्सव में 527 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना और जयपुर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मॉनसून की सक्रियता के साथ ही जिले में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल किसानों ने सबसे अधिक में मक्का खेती की है। इसके अलावा सोयाबीन तथा अन्य खरीफ फसलों की भी बुआई की गई है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत खेती और फसल प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिले में इस साल 32.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वन विभाग ने बस्सी अभयारण्य में ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव कर पौधरोपण का नवाचार किया है। इसके तहत स्थानीय प्रजातियों के बीज का छिड़काव किया गया है। विभाग आगामी सितंबर और फरवरी में सर्वे कर इस प्रयोग के परिणामों का आकलन करेगा। प्रशासन ने लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि अभियान का स्थायी लाभ मिल सके और जिले का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला में देश में अव्वल, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवासी जियो। RUIDP री ओरू एशियन डेवलपमेंट बैंक री मददू प्रदेश में 84.5 करोड़ रुपए रा खर्चू विकास रा काम कराया जावेला। राज्यरा उत्तराद और उगनी हल्का माय आवता दो दिन हल्क्यू मझला दर्जारी बरसात रा आसार। और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माय महादेव रा जयकारा री गूंज। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। राजस्थान ने अंगदान जागरूकता रा हलका माय बेहतरीन काम सारू राष्ट्रीय स्तर में उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवाजी चियो है। आज नई दिल्ली में 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह माय राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान माय अव्वल रहवण पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, चिकित्सा शिक्षा विभाग रे निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान रे निदेशक डॉक्टर चित्रा सिंह ने ओ इनाम देर नवाजा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ओ मान मिलन पर खुशी जाहिर कीनी। वे कहो कि अंग दान सारू जागरूकता बधावण सागे असरदार जनसंपर्क अभियान चलावण आ उपलब्धि हासिल वे सकी। ए बीच देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञा री तादाद में 5 लाख न पार कर की है। आज नई दिल्ली में राखी जिया 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लारला 10 साल में देश में हर साल 20,000 बत्ता उपतु अंग लकैचिया। ये मौके मंत्री अंगदान बारा में जाग जगावन रा मकसद एक साल ताई चलाए जावन वाला जुग जुग जियो अभियान री शुरुआत कीनी।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे। और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा। और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े कहो कि अंगदान इंसानियत सारो खुद न समर्पित कर देवण जुड़ियो महादान है। वह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में राखी जिया अंगदान जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अंगदान री शपथ दिलाई। भारतीय अंगदान दिवस रे मौके जनता माय जाग जगावण रा मकसद प्रदेश में आई कई कार्यक्रम राखी जिया। पाली में चिकित्सा विभाग और सामाजिक संस्थाओं की ओर अंगदान महादान जागरूकता रैली निकाली जी चिणमाई शामिल फेवन वाला अंगदान करण री सोगन लीनी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश श्री ओर राज्य में संवाद कार्यक्रम रखियो चावेला। RUIDP रा परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना बतायो कि वो कार्यक्रम 5-11 अगस्त ताई 84 ठोड़ा रखियो चावेला। इन तेत RUIDP 5वां दौर में कराया जावन वाला कामा री जानकारी देवन सागे राय लेवेला। वे बतायो कि राज्य सरकार 8 ठोड़ा रा विकास सारू 9.5 करोड़ रुपया रा खर्च न्यारा न्यारा काम करावेला। इन दौर में गंदा पानी और ठोस कचरा रा प्रबंधन, शहरी यातायात सुधार और विरासत न सहेज राखण समेत न्यारा न्यारा कामा रे जरिए 8 ठोड़ा ने स्मार्ट और आगेरी पीढ़ी रा रहवास लायक बनाया जावेला। श्री मीना बतायो कि 67 शहरा में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद गंदा पानी रो प्रबंधन करियो जावेला, जदके जयपुर जोधपुर कोटा और भरतपुर समेत 28 शहरा में ठोस कचरा प्रबंधन रा काम कराया जावेला। प्रदेश रा 1,32,00,000 वंचित और पात्र लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं जोड़ी चिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा बता।

0: किन्नी। सवाईमाधोपुर जिला में शिवाड़ रा घुश्मेश्वर महादेव और भगवतगढ़ रा अरणेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा में भक्त जल दूध दही और पंचामृतु शिवलिंग रो अभिषेक कर और पूजा अर्चना किन्नी। कावड़ियाई पवित्र सरोवरों जल्लार भोलेनाथ रो अभिषेक किन्नो। सवाईमाधोपुर रा जूना शहर में कावड़ यात्रा निकाली जी वट सिंजानी पोर भजन संध्या रो ये कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ रा शिव मिंद्रा माए जातरु भगवान शिव रे दूध जल और बेल रा पत्ता चढ़ार सुख समृद्धि री कामना कर रिया है। झुंझुनू माए एडीएम डॉक्टर अजय आर्य बतायो कि देवस्थान विभाग री ओरु लावरेश्वर महादेव मिंदर माए सवारे 9-10 बजे ताई रुद्राभिषेक महोत्सव राखीचियो। बाड़मेर जिला रा न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए मोटी तादाद माए जातरु भगवान शिव री पूजा अर्चना कर रिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला माए देश माए अव्वल। नई दिल्ली माए उत्कृष्टता पुरस्कार नवाजी जियो। RUIDP री ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद प्रदेश माए 84 ठोड़ा 9,500 करोड़ रुपया रा खर्च विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराधर उगनी हल्का माए आवता 2 दिन हल्क्यू मझला दर्जा री बरसात रा आसार। और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माए महादेव रा जयकारा री गूंज। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिया हैंग किसान भैया ने आपरे मांगीलाल भैरा घना है तो कोडू राम राम। किसान भैया देखो के वर्षा वेरी है अपने है जी को चौमासाली बाराणी फसल चल रही है और अपन देखा तो पुरानी टेम रे मायने जी का कृषि यंत्र हा वे सगड़ा है जी को कहीं है कि घरेलू टाइपू एड़ा बहुत ज़्यादा यंत्र को नहीं आप कह सका। लेकिन अबे आधुनिक समय है, आधुनिक समय रे मायने नित नुआ खेती रे माते है जी को प्रयोग हुए, खेती रे बीजा माते जी को प्रयोग हो रही और सागे सागे है जी को खेती रा जी का यंत्र है काम में आऊन आला। बैंक माते भी लगातार अनुसंधान हुए, नया नया है जी को कई प्रकार रा आधुनिक यंत्र खेती रे काम रे मायने सम्मिलित हो गया। तो किसान भैया देखा हाँ कि आधुनिक कृषि यंत्र है जी का खेती किसानी की प्रक्रिया ने बहुत ही आसान अधिक लाभदायक बनाई दी हुई है। ये यंत्र केवल श्रम और लेबर री बचत ही कौन करे बल्कि आप देखा तो बीज और उर्वरक रा सटीक उपयोग सु फसल री पैदावार भी बढ़ावे। अब आप बात करा कि अबार की टेम रे मायने जी का आधुनिक मुख्य यंत्र है कृषि रा वे किसा किसा है। खेतरी तैयारी रे वास्ते रोटावेटर है, मिट्टी ने बारीक पीसण वास्ते और समतल करण रे वास्ते ओ यंत्र काम करिया करे। ओ फसल रे अवशेषा रे मायने मिट्टी ने मिलाप रो और जैविक खाद बनाउन रो काम भी करे। लेजर लैंड लेवलर, लेजर तकनीक सु खेती ने पूरी तरह समतल करण खातर ओ यंत्र काम में आया करे। इसु सिंचाई रे समय पानी और बिजली री कमू कम 25-30% तक बचत हुए। अब देखा हाँ तो कल्टीवेटर और डिस्क हैरो कठोर मिट्टी हुए जिका खेतार मायने बेने तोड़न री और बीर बाद मायने भी मिट्टी रे मायने जुतई आसान वे जावे ओ सगड़ो काम ओ यंत्र करिया करे जिका ने आपा कल्टीवेटर और डिस्क हैरो किया करा। बीर सागे सागे बुआई और रोपाई रे वास्ते जिका आधुनिक यंत्र चाल गया बे मायने हैप्पी सीडर सुप

प्रोसीडर है, पराली जलाए बिना बिना आप बिने जलाया सीधा गेहूँ या अन्य फसलारी जी की बुआई है बैंक के करण वास्ते वो बहुत ही बेहतरीन यंत्र है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। बीज और उर्वरक खाद ने एक साथ और सही गहराई पर बोंडरे वास्ते बहुत ही अच्छो है जी को यंत्र है। पेडी ट्रांसप्लांटर धान की पौधरी रूपाई स्वचालित तरीका सु करण खातर जिका मायने कम समय लागे और अधिक रूपाई उजावे इन वास्ते वो यंत्र है जी को काम आया करे। अबे अपन देखा तो फसल री सुरक्षा और सिंचाई रे वास्ते किसा किसा यंत्र आ गया। वर्तमान टेम रे मायने फसल सुरक्षा और सिंचाई रे वास्ते कृषि ड्रोन है जिका री बहुत ही ज़्यादा भूमिका है जी को वेरी एबार कम समय रे मायने और बिना किसी लंबा चौड़ा श्रम रे बड़ा बड़ा खेतों रे मायने मोटा मोटा खेत है जिका रे मायने तरल उर्वरक कीटनाशक और पोषक तत्वों रो छिड़काव करण खातर वो यंत्र बहुत ही कारगर है। ड्रिप और स्प्रिंगलर सिस्टम बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई पद्धतियां पानी की भारी बचत करे। कटाई और थ्रेसिंग रे वास्ते किसान भैया कहीं कहीं त्रेरा है जी को नवीन और आधुनिक यंत्र आ गया। कटाई रे वास्ते देखो कंबाइन हार्वेस्टर आ गयो जी को कहीं हुए कि फसल री कटाई थ्रेसिंग दाणो एकदम अलग अलग कर देवे और अलग अलग नहीं कर देवे बल्कि एकदम साफ सफाइयों जी आप कहवा ग्रेडिंग करियोड़ो अलग ग्रेडिंग करा अपने तरीकों लेकिन बा मशीन मत ही ग्रेडिंग कर पर एकदम बोरियान मायने अपने धान भर देवे। तो ए तीनों काम एक साथ करे फसल की कटाई थ्रेशिंग और बिरी सफाई वो भी बहुत जोरदार है क्योंकि सफाई रे वास्ते जी को बाद में अपन समय देवनो पड़े ग्रेडिंग रे वास्ते अलग अलग आप करा तो वो सगलो इंग मायने भेड़ो ही वे जावे। रिपर बाइंडिंग मशीन गेहूँ धान ए फसलों रे वास्ते काटन खातर और साथ रे मायने बैंकी जी की लारे बचोड़ी जी का कचरो है बीरा बंडल बनावना पूलियां बांधनी वो सगड़ो काम ई मशीन हुए एक साथ ही। अबे देखा हाँ तो किसान भैया आधुनिक यंत्रारा प्रमुख लाभ कहीं कहीं समय और लागत री बचत आवे। जटे अपन पहली देखता कि काम रे मायने कई दिन लागता मजदूर भी घना सारा लागता बट ही अबे है जी को वो काम थोड़ा सा घंटा रे मायने ही पूरा वे जावे। सटीकता बीज और खाद री सही मात्रा और गहराई सुनिश्चित करण खातर बहुत ही सटीक है यंत्र है मतलब कटई कोई प्रकार री गलती री गुंजाइश ही कौन रेवे। उत्पादकता रे मायने वृद्धि अब देखा हाँ तो पहली टाइम रे मायने भावता घणो ही खस्ता घणा ही मेहनत घणी करता पण उत्पादन कम वेंतो और हमें देखो छोटा छोटा घणा ही खेतरा टुकड़ा वे गया भाई बन ढूंढता ऊंता लेकिन फिर भी छोटी सी खेती रे मायने भी बहुत अच्छी पैदावार ए यंत्र है जिको आपने दिलावे। समय माते बिजाई और पचे समय रे माते कटाई फसल री गुणवत्ता और पैदावार ने बढ़ावे। बीरे सागे सागे आप देखा हाँ तो ए यंत्र रे माते सरकारी सब्सिडी भी मिले। भारत सरकार है जी को कई प्रकार की योजनाओं के तहत ए कृषि यंत्रारी खरीद रे माते 40% लेपरा और 80% तक की सब्सिडी देवे। इन वास्ते किसान भैया खेती रे काम रे मायने नित नुआ जी का आधुनिक यंत्र खेती रे काम रे मायने जुड़ रिया है। आपने बे सगड़ा यंत्रारी तरफ ध्यान देवनो और बैंक के बारे में जानकारी लेबरा और ज्यादा ज्यादा ए यंत्रारो उपयोग कर अपनी खेती ने सरल सुगम और ज्यादा आय देवनाली बनो एडो आप प्रयास करा। और देखो किसान भैया चर्चा तो आप ओरेंज करा लेकिन एक छोटी सी सूचना आपने मैं सुनाई दूँ पछ देखो बने अपने शरीफ भाई बैठा बैठा मुड़ के है कि कई सूचना अबे भी काम री बताए आपने। एक सूचना है पशु चिकित्सा सेवा अबे बहुत ही बेहद और आसान वेरी है। व्हाट्सएप चैटबॉट है 1962 MU राजस्थान रे माध्यम पशुपालन विभाग री योजना और कार्यक्रम री जानकारी आप रे मोबाइल ते पुगेली। व्हाट्सएप चैटबॉक्स नंबर है जिका आप लिख ले रहो जिका कारण देखो हैंग बाता पशुपालन संबंधित सगली आप रे मोबाइल व्हाट्सएप माते आ जावेली 90 63 47 50 27 ए नंबर है।
या पछे देखो कि कटाई कोई पानी आता जाओ तो बीरो क्यू आर कोड भी है वो आप है जी को कहीं स्कैन कर प्रार भी

0: ओ व्हाट्सएप चलाश को पशुपाल का भयान वास्ते देखो विभागीय योजना मा और कार्यक्रम की जानकारी है जिसकी कल्डी सटीक इंक माते आवे गूगल मैप लिंक सहित निकटवर्ती पशु चिकित्सा संस्था मारी सूची भी सगड़ी इरमत आ जावे। चेट सहायता और उपचार अनुरोध 1962 की सेवाएं है जी को इरमते जारी रहे। वीडियो कॉल माध्यम पशु चिकित्सक सु ऑनलाइन परामर्श भी आप कर सका। तो देखो किसान भैया पशुधन है अनमोल, कराएं बीमा बचाएं मोल, पशुधन रो बीमो भी अपन कराउन चाहिए। और सागे सागे ई चैट बॉक्स में भी अपन जुड़ जावा। नंबर आपने बता दे रहा है, मैं एक बार पाचा सुन लियो, नंबर 9063745527 ओ व्हाट्सएप नंबर है। इरू जुड़ो ना तो पशुपालन री हैंग जानकारियां आपरे मोबाइल में इन हाजिर रही सा। और हमें देखो छोटी छोटी काम री और बात सुना।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: तो किसान भैया देखो सूचना और बड़ी कामरी सूचना। अब देखो के नाशा दौड़ रहे मायने हूं तो गांव गांव उतरे गियो को नहीं। विष्णु भाई गया गांव बांदरिया ढाया और बट्ठे उन्नत पशुपालक रामपाल मिलिया। वेणसु जी की बातचीत हुई, बा आपने करहा पूगती
3: भैया नित्य नई जानकारी वास्ते गांव गांव त्रो करहा। और आज देखो एडो गांव त्रो करियो हां जटे हारे मोटी हड़क बैर बिरे कनू निकल रे देखो ढाणिया है और ढाणिया रे मायने एक ताम जाम बढ़िया ऊपर पतरा चढ़ियोड़ा है और मायने देखो मोटा मोटा काला काला जीव भैंसिया बांधोड़ी है। कई टाबरियार कई माया बेंदड़ियार कई आदमी काम कर रहा है और एक भाई जी देखो हवा खावे है रुखाली करे है बहरी देख रहे करे कराम बंतल। राम राम सा
4: राम राम सा राम राम सा
3: शुभ नाम आप रो
4: मार नाम रामपाल कहे।
3: रामपाल जी क्यों गांव
4: ग्राम पंचायत इंदाना है बांधिया ढाणी।
3: अच्छा बांधिया ढाणिया का। तो रामपाल जी कहीं डेयरी वालों काम करो
4: 25-30 साल चले
3: 30 साल कर रहे हो। ओहो जन तो यहाँ पड पडार निवड़ियार काम हरू कर दियो।
4: काम हरू कर दियो पडल।
3: तो कतवी तई पड्या
4: मैं 12वीं तई पड्यो
3: पचे की नौकर ड्योकली लागी
4: काई 12वीं पड्या बाद मायने आरे सिम सिलेक्शन होयो मारो 3 दिन रेर पाछो आएगो
3: काई पाछा की आया
4: आए के मन मा जीव लागो मैं धंधो कर को करा।
3: अच्छा अच्छा भाई नौकर कौन बना
4: नौकर कौन
3: बना मालक ही बना
4: खुद व्यवसाय करा जी बिचाई में खुद व्यवसाय करा।
3: तो 35 साल होगा।
4: हाँ 92 में शुरू कर दी मैं।
3: वाह सा वाह। तो भैंसा तो रामपाल जी खासी दी के वो कता जीव है
4: 62 जानवर है बार
3: 62।
4: हाँ
3: मोटी कती है
4: मोटी 24 भैंस है 24 है 10 पाटी पालुड़ी पर की
3: ठीक है। और ए छोटी छोटी निरी दी के
4: हाँ ए है 9 पाटी है 5 पाटा 14 जानवर है।
3: अच्छा तो कहीं या थाने कटू सीख मिली भाई डेयरी व्यवसाय करा रोजगार करा ठीक रहे कोई भाई सेन कियो हो कोई कटी खबर पड़ी होनी
4: खबर की कौन पड़ी हो मैं माप मान लियो लोगा नौकरी करी मान लियो 8 महीना।
3: हाँ
4: फिर मैं नौकरी में लाइक में नौकरी में आम पालन पोषण हुआ कोने।
3: अच्छा
4: जब मैं तो खुद को मैं व्यवसाय करा
3: कत्ती भैंसों हरू करियो
4: मैं एक भैंस हरू करियो।
3: अच्छा पहले एक भैंस रखी।
4: एक भैंस ही मालिक ने, बाद के मायने दो ली, पर दो की तीन हुई, चार हुई, धीरे धीरे धीरे धीरे एम बढ़ोतरी करी।
3: बढ़ोतरी हो रही है। तो आज है देखिए 60 हितर जानवर आपका है।
4: 60 जानवर है।
3: तो एमो दूजे कती है
4: अब आज 20 भैंस दुआ है।
3: तो अबे जी यहाँ दुआरी की टाइम है।
4: हाँ
3: तो दुआरी थे करो कोई राख्योड़ है आदमी
4: घर के हाथ में कोई दो है घर के ही है मांगे।
3: अच्छा घर घर का ही है। अच्छा मिलजुल काम करो।
4: मिलजुल काम करा।
3: तो एक टंको पचे दूध कतो कहीं उजे
4: अब दूध 80 पीछे से टाइम को
3: तो ओ दूध अटे हारे बिक जे
4: नहीं नागो सप्लाई है पूरी।
3: तो नागोर कोई गाड़ी ले जाओ मोटरसाइकिल।
4: मोटरसाइकिल ले जाओ गाड़ी भी है मोटरसाइकिल में ले जाओ।
3: तो क्या एक जगह दो बंदिया
4: नहीं पूरी ग्रांग रिटेल बंदी है किलो दो किलो तीन किलो
3: हगली बंदिया है
4: पूरी बंदिया।
3: तो पूरा तो जन रामपाल जी कासा फिरनो पड़े
4: डेढ़ घंटे सुबह डेढ़ घंटे शाम का।
3: तो थे खुद ही जाओ बजे
4: खुद ही जाऊँ दोनों टाइम
3: दोनों टाइम है। तो कहीं भावड़िया कहीं मिले
4: 70 रुपया है
3: 70 रुपया भाव है के और कई अंक भाव कई साठ आलो कई किया करे के थोड़ो घणो की पानी मिलावे के साठ आलो चीज है
4: पानी कोन माय मशीन लगेड़ी पीस ले मान क्रीम कार लबो गाल ले बेड़ो।
3: अच्छा मशीन लगेड़ी
4: 80 रुपया पड़ना 80 का पाव पटका।
3: तो करीम पचे काडो है मान
4: करीम काडा की मान 30 किलो सुबह 30 किलो शाम का।
3: तो अब जमार घी बनाओ
4: जमार घी बनाऊंगा रोज को 4 किलो घी आ जाए
3: कहीं भावड़ा है घी
4: 800 रुपया
3: कोई ले जाओ तो 800 माप दे दो
4: 800
3: कणी है जो को हरदम उपलब्ध रहे
4: 24 घंटा उपलब्ध है
3: कोई ले जाओ।
4: हां एक नंबर जापाम काम लेवे जलाओ घी है एक नंबर को
3: बिलावणो करो
4: बिल्कुल बिलावणो करा
3: भाई हाल है मशीन पहले दातो करता
4: मशीन बिलावणो करा गर्म कर भी जमावा जमा जाऊं देर पर भी दूसरे दिन बिलावणो करा
3: कुल मिलार भी घी बढ़िया है
4: एक नंबर को।
3: अबे बात आवे भैंसा के खान पीन की तो अबार तो चौमासो है तो कहीं बीड़ोड़ो
4: को नहीं हरो चारो आवे 24 घंटा ही मान लियो बार चौमासो मास 4 महीना हरो चारो आ शिफ्ट आई।
3: अच्छा
4: अबार शिफ्ट आंतो तो दिन आ बार बंद हो क्यों बरसात होनो खेत में बड़ी जगह जवाड़ा में।
3: अच्छा अच्छा अच्छा
4: जर बंद हो अब 2 दिन पास शिफ्ट हो
3: मोल लियो या गरीब भाव
4: नहीं मोल
3: कहीं भाव कहीं पड़े
4: 400 पौने 400 कुंटल आवे।
3: अच्छा तो गाड़ी घर की गाल लियो या बटू ले रहा
4: किराए आज नाग देवे
3: नाक देवा
4: बात करिया मत खेत और धनी जा नाके।
3: तो सुबह सुबह नाको या दो टाइम
4: दोनों टाइम।
3: अच्छा अब चीप तो अबार नहीं है थे को भाई बरसात होगी आलेड़े में।
4: अब
3: तो
4: अबार सूखी कुतर
3: जमार की बीम कहीं भाव चले
4: अबार 1700 रुपया है
3: काशी महंगी होगी
4: बहुत भारी महंगी महंगाई चामड़ा पाड़
3: तो बरसात धुनो की तो फर्क पड़ी नहीं जमारिया भाई ये लोग
4: अब बाल एक महीना बाद फर्क पड़ी
3: पचे फर्क पड़ी
4: एक महीना बाद।
3: तो खाली बांधोड़ी रखो इन्हें फेरो कौन खुली
4: खुली कौन फिर 24 घंटा बंदी
3: क्यों बीड़ोड़ो कौन रखो
4: चेरे कौन बीड़ा में अब आ रहा बंटा ला दी एक बार मान लो पानी पी ली दुआ टाइम है पचरा कौन है।
3: तो जी टाइम अबार जी दुआरी टाइम है तो अबार इन बंटो दे दियो
4: अब बंटो कुतर बार मिल जाए ना
3: कहीं दो
4: बंटा मान आ था के कपास खड़े है सोयाबीन चापड़ है चूरी है गुड़ है तेल है।
3: अच्छा ये दो अबार गुड़ दो
4: अबार गुड़ कौन दो
3: तेल भी अबार कौन दो
4: नहीं तेल दे अबार
3: तेल दो एक जीव ने कत्तो दो
4: 100 ग्राम
3: रोजिना को
4: रोजिना परमानेंट
3: मोटी भैंस होता है छोटी हो
4: 100 ग्राम परमानेंट
3: और ए जगह बीचे आए आने बजे
4: आने बार तेल हलू कौन करा
3: आने कर दो
4: आने ए दो दो सूं तो फ्री हुई नहीं बाद के मायने।
3: अच्छा
4: बाद में फ्री
3: रामपाल जी कई बार गाया में कहीं भैंसा में कहीं लल्डिया बकरिया में घनकरा रोग हुए और चौमासे के मायने तो देखो अलोड़ो अलोड़ो रेवे कई रोग हुए भैंसा के मायने वे कहीं
4: नहीं माकित कौन बीमार माँ के भैंसा बीमारी कौन
3: वे किसे किसे है जानकारी थी ना आपने
4: नहीं मान लो बीमा छोटी मोटी मान लो जैसे मुआ आ जाने भाई हम 2-4 40 को लेकिन माँ के वो बीमारी कौन
3: है पूरा पाके कौन
4: है कदाई
3: के अन काले बाबा जेर के बुखार है लंगड़ा बुखार आ जे
4: मान नहीं लंगड़ा बुखार भी आओ भी है
3: हां
4: मौसम के हिसाब आया करे
3: ओ क्यों उठ जेर कई तरह का
4: आप छोटी मोटी बीमारी चले हो आप रे आवे लंगड़ा बुखार भी आवे अब जैसे मान लो मुआ वाजे तो पीपी को पानी आया करे पीपी को पानी पहला छाप धोवे ना बिल्कुल
3: सही पड़े था रोग हो
4: बीमारी मान लो लक्षण बता दी
3: पड़े दीख जाए भाई खुराड़िया पाक जाए कर जाए मुंडा में पानी आन लाग जाए कर जाए
4: बच्चे भी जो मतलब अपना सुस्त हो जी।
3: तो आज ये दिन मान लो कताक दिनों ठीक हो जाए अब तो पर लागे
4: 5-7 दिन हम 5-7 दिन एक हफ्ता में ठीक हो जाए
3: दोनों टाइम है जो को दवाई देनी पड़े
4: हाँ दवाई देनी
3: तैयार भी यहाँ पचवा पाची
4: हाँ पड़ी।
3: तो ए जी टाइम बीमार हो जाए भी टाइम पर दूध डो की कम वे
4: दूध थोड़ी
3: ओके कतो फर्क पड़े
4: दूध तो आधो कर दे पाचो जैसे 5 किलो से 2.5 किलो भाजी बा
3: अच्छा
4: क्यों चरे पिए कौन बा नहीं चरे पिए दूध छोड़ दे
3: बिया तो एक घनी तो रामपाल जी मने देसी नस्ल की दिखे की मायने कुंडी दिखे ज्यादा देसी के
4: देसी कोनी हरियाणा पंजाब की भैंस देसी कोनी भैंस
3: देसी कोनी ए किसी एक दो तो बढ़िया तकड़ी मुरा नस्ल की दिखे
4: नहीं माय मुरा घनी एक दो गाय डावड़ अगली मुरा की मिंडी अनमोल चीज है तो
3: बहुत बढ़िया है तो इनको दूध का तो कहीं
4: 20 लीटर पक्का 20 लीटर है 10 सुबह 10 शाम
3: जोरदार दूध है और दूध खाउन पीउन के मायने किया एकदम ज्यादा
4: एक नंबर को
3: तो आ तो एक दो ये यान की बेचा तो इनका बिचिया बचे
4: इनका बिचिया तो एक दो रिया पाटी पालना भेज दी मैं गले कर ली अब पाटी है कोना बजाय देने पाटी होएगी
3: कहीं भाव कहीं है का बार लेवे तो मान लो
4: अब बाद 2 लाख मोन मिले
3: 2 लाख रुपया और छोटी वे मान लो पहले आन तो
4: पहले आन पाटी साम पैसा है
3: भाई लाख डेढ़ लाख तो लगे टेक है ही
4: हां लाख उन्दी पाटी आवे
3: तो अंग मायने पते दी के एक पाडो भी है ओके नस्ल को
4: ओ पाडो है तो मुरा नस्ल को और ये सींग खुलो दे को खिलाऊं आगे जा कहीं रिजल्ट कहीं मिले
3: सींग खुला लागे तो नहीं लागे थोड़ो सो
4: और है मुरा नस्ल को प्योर हरियाणा की भैंस को पंचो है
3: तो भैंसिया गया बण यूं ही वे के कोई
4: नहीं मोटो पाडो वो एक नंबर खड़ो भी मोटो
3: अच्छा भी हुए
4: वो हरियाणा बच्चे
3: तो वो मोल ले या
4: नहीं मोल लियो
3: कताक मिले
4: वो 17000 लियो आज मैं 4 साल पहले
3: अच्छा तो इनके पास खान पीन वास्ते न्यारी राखनी पड़े
4: नहीं ओए ओए बंटो तेल चालू है बिन तेल देवा बंटो देवा
3: तेल तो हरदम देनो पड़े
4: तेल देवा
3: तो बंटाक मायने ए चापड़ रहे अगली चीजें
4: ओए सेम
3: तो कई बार काई वे मान लो भाई भैंस गया बण वे करे देखो महीनो वे 2 महीनो पाची बजे जण पछ काई उपाय को कृत्रिम गर्भाधान करो
4: सुई कोई मैं सुई कोन लगाऊ पड़े पड़ावा और भी मैं बाकी क्या 3 महीने फिर 3 में भैंस तो नहीं टिकी ना 21 दिन उठा पड़ जाओ तो पता चलता
3: है हां 21 दिन
4: भाई तो दादी पाची
3: तो अब बात आवे जी देखो बार चौमासो है और चौमासा के मायने कादार कीच रेवे थाने तो व्यवस्था तो बढ़िया करी होड़ी
4: मां को पक्का करी
3: होड़ी हैं पक्को है इन मायने कादा कीच वे कोनी और ए फोटा वोटा भी हिरकाउन वास्ते बढ़िया पावड़िया वड़िया बनाईड़ी और जो को इनका है जगह पैसा भी साहब है ओपच कट धड़म जावे कटिन पाइप लगाएड़ो
4: बार बार तो उठरे में वजे बनेड़ी बारे पर मैं खात में गला है
3: खात में गालो तो खाद कुल मिलार एकदम सड़ा गला तैयार करो
4: बिल्कुल तैयार पानी जावे खात में हाँ। पानी पूरा खात में जावे वो मुंह पे साहब है जो ये वजे बनेड़ी दोनों साइड में
3: हो जा हां हां
4: बस बाल जो भी गोबर में गला
3: तो गोबर है जो पे कंपोस्ट उजे तैयार सड़गल
4: बिल्कुल एक नंबर
3: वो खेता में नाको पे
4: खेता में नाका 2 साल बेचार 1 साल खेत में नाका
3: अच्छा बेचो भी हो कहीं फटा कता कहीं लो
4: 6000 रुपए
3: 6000 रुपए फोटो चाहे कोई ले जो घर का खेता में तो 2-3 साल एकर नाक दो
4: 3 साल एकर
3: 3 साल नाको फेर नाकनो पड़े एकर नेर एकर बने या पूरा आ जाओ भैंसा
4: मांगे तो 1 साल खा नाके मां 35 बीघा जमीन भरी जाए अति जमीन है
3: एक साल में तो खेती में पच काई है अबार काई भाई
4: अबार मूंग है ज्वार है
3: क्या काई फसल
4: बढ़िया है फसल
3: बरसात चौकी होगी
4: बरसात हिसाब की एक कड़ी तो नहीं ठीक है बरसात
3: तो अबार काई काम काज चले निनाने ना
4: निनान वे ज्वार हलनी कर दी मूंगा निनान वे
3: अच्छा हलनी करी हलनी हो काई फर्क पड़े
4: हलनी वहां पर ते छोड़ को जमीन पाछो
3: भाई पौधा तना कने जो माटी भी आ जाए थोड़ा मजबूत हो जाए
4: भाई आंधी रुड़ा वाला आड़ी फटा को बजे बाद में आने यार ये का जमीन ते छोड़ो कोने का निकल दियो
3: ते कौन छोड़े भाई बीर का मालो 5 दिन मोड़ी वेतो
4: हां ते छोड़ो कोने
3: तो अबे थाके हिसाब हूं कद बरसात उजे जण ए थोड़ी फसल
4: छोड़ो भाई मांगे हिसाब 5-4 दिन बरसात होवे जण सही रहे
3: अच्छा भाई हलने हलने करियो तैयार है
4: चार है
3: अबे ते एकर का खेत भरी जे जण सही रहे
4: ए भरी जे मजदूर दूजो हलने उम्र भरी तो न्याल करना आगियो तो मान लो 10-20 दिन अड़े कोनी
3: तो एक बरसात मान लो बढ़िया वे तो हुजी फसल
4: हां एक बरसात बढ़िया होगी छपो करा दे
3: बीज बाड़ा वाला हुजे
4: गुण की नहीं जोर को एक बरसात जोर को छपो करा दियो
3: धान तो चोका है
4: हां चोका
3: तो जण जिया अबार बिरखा वे तो बिरखा वे जण पचे पानी आनी ऊपर मकान ना को थांगा पत्रा को उतार था
4: बिल्कुल टोटल होत बिड़ा है
3: सब
4: हमारे घर 2 होदे 1-3 होदे
3: भाई अपन प्रधानमंत्री जी भी आज कार्यक्रम चले है के भाई जितो भी पानी है बरसात को बिन बचाओ संरक्षण करो तो थे जगह जल बचा रियो
4: मैं बचा रियो क्यों होद में होदा मावा पानी बिल्कुल
3: होद कतोक मोटो है
4: वो 6 टैंकर का है
3: अच्छा तो एकर जिया चौकी बरसात वद
4: भरी जाए
3: पचे कताक महीना तें चल जाए
4: पर नेट तरह पे फेर बरसात फेर भरी जा दो ये मांगे भरी बोर वो
3: भरी जी बोकरे कुल मिलार पानी पूरो बचाओ बरसात वालो
4: पानी मैं पीऊं वहां से दाल लाडू टैंकर कुडी कोनी
3: अच्छा
4: 12 महीने पीऊं वास
3: पूरो है जो को बरसात आलो
4: बरसात आलो भैया
3: बहुत फूटरी बात है सा रामपाल जी ए पतरा था इतना छेड़ा भैंसा के तो आंको भी पानी जो को उतरे ओ नालियों में सीधो जावे केम जा
4: ओ नालियों सीधो बाहर गोबर में जावे
3: अच्छा तो इनकी भी बचत कर रही है पूरी
4: गोबर में जावे गोबर गल जावे
3: कई जगह जावा तो देखा मोटा मोटा पाइप लगाएड़ा वे मोटा यहां नाडा उजू बनाएड़ा थे बनाए को
4: नहीं कौन बनाए एक बार मान लो पाइप लगा रहा मान लो अपन होद में गाल भी सका पानी अपन
3: भाई पीऊं ने भी गाल सका
4: हां पीऊं
3: ऊपर पत्थर साफ है तो
4: बिल्कुल साफ है
3: तो ओ सीधो हो जाओगे थांगे नाले हो जाओगे
4: सीधो बारे कात में
3: गोबर में जानते रहे। तो रामपाल जी अबे जी यहाँ कहीं विचार है आगे और भैंसिया बदौन को विचार है
4: बदौन को विचार है।
3: अच्छा और यहाँ लेव जन कट्टू ले रहो बाहर जा ले रहो
4: आमने एरिया मिल जाए और हरियाणा पंजाब गया भैंस
3: तो बटू पचे ले रहो जन थाने जानकारी पूरी हुई की
4: जानकारी साल धंधो ही करिए
3: भाई। आप हरियाणवी नस्ल की बात करा कुंडी की बात करा आप तो कहीं पिछाण कहीं कोई दूजो भाई से लेनी चाहे
4: भैंस हरियाणा की भैंस उन पीठ पाट लारू मजबूत भैंस हुई
3: ठीक है
4: नीचू थन लेवा की भैंस मजबूत हुई सींग संगूठी भी छोटी हुई
3: छोटी हुई। तो आ है जी पिछाण है भी तो बारू जिया ले रहो तो पच कोई बेलागुर जाओ गाड़ी वाड़ी लेर किया कह ले
4: नहीं कोई दो चीजें मिल जावे तो लिया भाई दो दो चीजें बैठ लिया भाई साहब।
3: तो चौकी नस्ल की बात करा पहल्याण की तो कताक में आ जा
4: पहल्याण बात चौकी एक नंबर भेड़ लेवा डेढ़ लाख नीचे को ना
3: दूध की तो कहीं भी
4: दूध 13-14 किलो दी पहल्याण पाटी चौकी पाटी रहना की लेवा ना पा
3: अच्छा
4: 13-14 किलो दी
3: भाई टेम को 6 हाथ की ले दे
4: 6-7 किलो
3: पच ज्यों ज्यों चराओ ज्यों ज्यों
4: हां बड़ी
3: अब जेका जानकार लोग बे कहवे सा आने भी पौष्टिक आहार दो है खानो जो को चोखो दो तो थे तो दे ही रही है वो भी है
4: तो देवा
3: है था के हिसाब मु सब बढ़िया है जो को अंग शरीर वास्ते काई रहे
4: शरीर वास्ते आने रे तेल सब टॉप की चीज है तेल ए जानो छोटा बे पड़िया ना हां बार बार तेल खल दीवड़ी आ
3: ए कतक कत महीना का
4: बे माइल होगा था के 20 22 महीना का
3: ठीक है।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: और भैया अबे आओ सुना सवाई दान जी और पार्टी रिकॉर्डो ओ भजन।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
3: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
3: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
3: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
3: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार

0: पुरस्कार या सम्मान है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी...

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्यनिष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
0: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
0: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर।

0: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
1: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं PTI भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी

संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए
राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

FM-band 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से।

इस गीत की हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया था रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डोली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका प्रभा देवी तामूरिया और पोता इनका मास्टर अल कबीर, ये छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने इस गीत की फरमाइश चाही है। इसी प्रकार इसी गीत के फरमाइश किए इन्होंने लिखा है बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। इन्होंने कहा कोई भी फिल्म का गीत आप सुनवा सकते हैं। हमारे सुनने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। तो हम आपको सुनवा रहे हैं बातों बातों फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की।

प्रोग्राम का अगला गीत सुनना चाहा है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। फिल्म का नाम फकीरा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा।

प्रोग्राम का अगला गीत बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आपने लिखा है, आपने व्हाट्सएप में मैसेज किया है कि आप किसी भी फिल्म का गीत सुनवा दें, तो हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में कभी कभी फ़िल्म का ये नगमा।

0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक झलकी, रब झूठ ना बोलाए।
1: हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो ऐसा पति मुझे मिला?
2: क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: चुप करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।
2: थैंक यू।
1: हे भगवान, अब मैं ऐसे इंसान का क्या करूं?
2: करना क्या है मैडम, बस इतना बता दो कि हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं।
1: हे मेरे आदरणीय पतिदेव, हम तुम्हारे झूठ बोलने की बेकार आदत को लेकर बात कर रहे थे।
2: बात नहीं कर रहे थे, झगड़ रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, मैं झूठ कब बोलता हूँ?
1: तुम जब भी अपना मुँह खोलते हो ना, तो उसमें से झूठ ही निकलता है।
2: ये तुम्हारी गलत फहमी है डाले, मैं झूठ नहीं बोलता।
1: चुप करो झूठे इंसान, तुम्हारी वजह से मुझे कई बार नीचा देखना पड़ा है।
2: अच्छा, कब?
1: अब ये भी बताना पड़ेगा। तो सुनो, तुम 2 दिन पहले वो साड़ी कहाँ से लाए थे?
2: बाजार से।
1: झूठ, वो साड़ी मिसेस वर्मा की थी जो बालकनी में सूख रही थी, हवा से उड़कर गिर गई और तुमने पॉलिथिन में पैक करवा दिया उसे। हे भगवान, मिसेस वर्मा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी?
2: बस इतनी सी बात।
1: चुप करो और ये बताओ कि वो मिसेस शर्मा को क्या झांसा दिया है तुमने?
2: क्या, मैंने क्या कहा उनसे?
1: झूठे इंसान, तुमने नहीं कहा कि तुम उसके भाई की नौकरी लगवा दोगे?
2: अच्छा, वो तो
1: अब वो सुबह से शाम तक यही पूछती है, भाई साहब ने कुछ कहा क्या, भाई साहब ने कुछ बताया क्या।
2: अरे यार, तुम परेशान क्यों होती हो?
1: परेशान ना हो तो क्या करूं, मोहल्ले का हर छोटा बड़ा सब तुम्हारी शिकायत करते हैं। और तुमने वो मिस्टर जैन को क्या नुस्खा बताया? उनके पूरे शरीर पर फफोले हो गए।
2: मिस्टर जैन? अरे यार डार्लिंग, वो मुझसे जवान होने का नुस्खा पूछने लगा।
1: और तुमने उसे
2: क्या करता? रोज रोज परेशान करते थे।
1: मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करके क्या मिलता है?
2: कुछ भी नहीं।
1: तो फिर ये सब क्यों करते हो?
2: अरे शीला डार्लिंग, ये सब आज का चलन है।
1: अरे भाड़ में जाए ऐसा चलन।
2: अगर हम सच बोलने लगे ना, तो हम एक दिन भी ढंग से जी नहीं पाएंगे।
1: तुम्हें मुझसे या मुन्ने से जरा भी प्यार नहीं है?
2: है क्यों नहीं?
1: तो आज से तुम हमारी खातिर झूठ बोलना और ऐसी वैसी हरकतें करना बंद कर दो।
2: अरे भाई, मैं तुम्हारे और मुन्ने की खातिर ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ।
1: अगर हमें खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा।
2: अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अच्छा भाई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। बस
1: ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख कर कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे।
2: देखो, कसम मत खिलाओ।
1: बिना कसम के तुम सुधरने वाले नहीं हो।
2: अरे यार जिद मत करो,
1: आज तुम्हें ये जिद माननी पड़ेगी।
2: देखो फंस जाओगी, तुम्हें नहीं पता है सच की धार कितनी तेज होती है।
1: मुझे नहीं सुनना, तुम कसम खाते हो या नहीं?
2: ओके, लो मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बस
1: ये हुई ना बात, अब देखो अपनी बात पर कायम रहना।
2: मैं तो कायम रहूंगा, पर तुम तैयार रहना।
1: किस चीज के लिए?
2: तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है।
1: तुम चिंता मत करो, उससे मैं निपट लूंगी।
2: ठीक है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।
1: ओह माय गॉड,
2: क्या हुआ?
1: आज मुन्ने की स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन तुम्हारी बातों में मैं सब भूल गई।
2: अरे तो अभी चली जाओ ना।
1: अब जाऊंगी तो देर हो जाएगी ना। ऐसा करो, इस बार तुम मिल के आ जाओ।
2: मैं? नहीं नहीं, मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी।
1: प्लीज मेरी खातिर।
2: ठीक है भाई, तुम्हारी खातिर मैं आज बॉस की डांट भी खा लूंगा। अच्छा चलता हूँ।
1: देखो अपनी कसम पर कायम रहना और शाम को जल्दी घर आना।
2: ओके डार्लिंग, ओके।
3: आपका बच्चा स्कूल का सबसे शरारती बच्चा है, क्या आप इसको घर पर कुछ नहीं कहते?
2: जी वो
1: मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोलो।
2: हाँ हाँ, नहीं बोलूंगा झूठ।
3: ये क्या बड़बड़ा रहे हैं आप?
2: जी कुछ नहीं, आप मेरे बेटे के बारे में जो भी बात बता रही थी ना, वो मुझे पता है।
3: आपको पता है तो आप कुछ कहते नहीं उसे?
2: कहना क्या है, हमारे परिवार में बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैडम, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे?
3: मैं मानती हूँ कि बच्चे थोड़े शरारती होने चाहिए, लेकिन आपका बच्चा तो परीक्षा में नकल भी मारता है। परीक्षा में पर्ची पर इतने बारीक अक्षरों में लिख कर लाता है कि बस। अब जो मेहनत इतनी सफाई से पर्ची बनाने में करता है, अगर थोड़ा पढ़ ले तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे।
2: अरे अरे, वो पर्चियाँ वो थोड़ी बनाता है।
3: फिर कौन बनाता है?
2: मैं बनाता हूँ। हाँ, मेरी वाइफ कहती है कि बच्चों के इम्तिहान सिर पर है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा मैं और क्या मदद कर सकता हूँ। उसकी जगह मैं तो इम्तिहान देने से रहा।
3: हे भगवान, कैसे बाप हैं आप?
2: अरे इसका सारा क्रेडिट आप अकेले मुझको मत दिए थे।
3: मैं समझी नहीं।
2: वो क्या है कि आपने पर्चियां तो पकड़ ली और देख भी ली, परंतु शर्ट के नीचे लिखा आपने नहीं देखा है शायद, वो मेरी वाइफ की मेहनत है।
3: ओह माय गॉड, मैं बेहोश हो जाऊंगी।
2: पर ये सब तो चलता ही रहता है मैडम, पर एक बात की खुशी है, हमारा मुन्ना हम दोनों पर बराबर गया है।
3: क्या मतलब?
2: अरे हम दोनों अभी पढ़ाई में ऐसे ही थे।
3: हे भगवान।
2: अरे आपको पता नहीं हमारी शादी कैसे हुई थी?
3: जी नहीं।
2: मैं बताता हूँ आपको। वो हुआ यूं कि मैं बीए फाइनल ईयर के एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा गया। इधर इसकी माँ हायर सेकेंडरी में फेल हो गई। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही जगह पर आत्महत्या करने पहुँचे।
3: तो फिर
2: क्या, जब हम दोनों को एक दूसरे की दास्तान पता चली तो हमने तय किया कि आत्महत्या करने से अच्छा हम दोनों शादी कर लें। अब आप ही बताइए, ऐसी परफेक्ट मैचिंग कहीं मिलेगी?
3: हे भगवान।
2: मैडम मैडम मैडम मैडम ओ मैडम जी, मैडम जी, लगता है कि मेरे सच का पहला तीर इसे लगा और ये ऊपर वाला इसकी रक्षा करे। उफ, कितनी गर्मी है आज।
4: जा बॉस के पास जा, वरना तेरी सारी गर्मी बाहर निकाल देगा वो।
2: क्यों, क्या हुआ?
4: पता नहीं पर बहुत गुस्से में है, सुबह से चार बार तेरे बारे में पूछ चुका है।
2: अरे कोई गड़बड़ तो नहीं है?
4: अब क्या पता, वो तो तू अंदर जाएगा तभी पता चलेगा। वैसे तू एक बात बता, तू ये रोजाना देर से ऑफिस क्यों आता है? घर से तो तू बहुत जल्दी निकल जाता है।
2: रोजाना की छोड़, पर आज मैं बेटे के स्कूल चला गया था।
4: अच्छा चल जा, पहले बॉस से मिलकर आ जा, बाकी की बातें बाद में करेंगे।
5: आइए आइए मिस्टर श्याम, वेलकम। आखिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई।
2: कैसी ख्वाहिश सर?
5: यही कि आप ऑफिस आए, आपके चरण कमल मेरे चैम्बर में पड़े और मैं धन्य हो जाऊं।
2: सर आप मजाक कर रहे हैं सर।
5: मजाक? मजाक तो तुमने ऑफिस को बना रखा है।
2: सॉरी सर, वो
5: शट अप मिस्टर श्याम, ये ऑफिस है, पब्लिक पार्क नहीं, जहाँ जब जी चाहा टहलने आ गए।
2: सर मुझे मालूम है सर, मैं
5: बहुत बड़ा उल्लू हूँ।
2: यस सर।
5: कैसे ढीठ हो तुम, तुम्हें किसी बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
2: पड़ता है सर।
5: किस बात का?
2: वही तो बता रहा हूँ सर।
5: बोलो।
2: सर आज मैं बेटे के स्कूल गया था सर।
5: आज गए थे?
2: हाँ सर।
5: या फिर रोज जाते हो?
2: नो सर, आज ही गया था।
5: तो फिर रोजाना लेट क्यों हो जाते हो?
2: वो सर वो
1: तुम हमारी खातिर झूठ बोलना और ऐसी वैसी हरकतें करना बंद कर दो।
2: हाँ हाँ, नहीं बोल रहा हूँ झूठ।
5: क्या हुआ, मन ही मन में मुझे गालियाँ दे रहे हो?
2: नो सर।
5: तो बताओ पिछले तीन चार महीने से तुम्हारा काम पेंडिंग क्यों चल रहा है?
2: सर सप्ते भर में सारा काम पूरा हो जाएगा सर।
5: जो काम इतने दिनों में पूरा नहीं हुआ वो सप्ते भर में पूरा कैसे होगा श्याम?
2: सर अब मैच खत्म हो गए ना सर।
5: मैच?
2: हाँ सर।
5: मैच से क्या संबंध?
2: दरअसल बात यह है सर कि जिससे मैं काम करवाता हूँ ना, वो मैच का शौकीन है। सर जब भी मैच होता है ना, वो सब काम काज बंद कर देता है।
5: What nonsense?
2: मैच से पहले वो किसी काम से शहर से बाहर था सर, वरना आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देता। वैसे सर आपको मुझ पर प्राउड होना चाहिए।
5: प्राउड? वो क्यों मिस्टर श्याम?
2: सर मेरे इस कदम से एक बेरोजगार को मदद हो रही है।
5: तुम जानते हो श्याम कि तुम क्या कह रहे हो?
2: सच बोल रहा हूँ सर, सच के सिवाय कुछ नहीं।
5: इडियट, तुम जानते हो इससे तुम्हारी नौकरी जा सकती है।
2: मालूम है सर, पर मैं मजबूर हूँ सर।
5: हे भगवान, ये इंसान तो मुझे पागल कर देगा।
2: सर आप यकीन कीजिए, सप्ताह भर में काम पूरा हो ही जाएगा सर।
5: देखो श्याम, तुम अभी जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
2: सर वो
5: श्याम, गेट आउट, गेट आउट।
1: अरे आप जल्दी अंदर आ जाओ, आपको अंदर आते किसी ने देखा तो नहीं ना?
2: क्यों, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो?
1: तुम्हारी हरकतों की वजह से।
2: मैंने क्या किया है?
1: तुमने क्या नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ झूठ नहीं बोलने की कसम दी थी।
2: डार्लिंग क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, अब जब इंसान झूठ नहीं बोलेगा तो जाहिर है सच ही बोलेगा।
1: तो सिर्फ सच बोलते सबकी बखिया उधेड़ने को किसने कहा था?
2: अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
1: क्या जरूरत थी राधा भाभी से ये कहने की कि भाई साहब सिर्फ सफाई वाली के चक्कर में जल्दी उठते हैं?
2: वो मैं
1: चुप करो, पता है कितना सुना कर गई है मुझको
2: डार्लिंग वो।
1: और वो पड़ोस वाली शारदा जी, उनको ये कहने की कहाँ जरूरत थी कि वो दिनों दिन औरत से भैंस होती जा रही है?
2: डार्लिंग वो
1: बंद करो डार्लिंग डार्लिंग करना, पूरे मोहल्ले में से सुबह से शिकायत आ रही है। और तो और मुन्ने की स्कूल में भी ना जाने क्या कहकर आए हो।
2: वही जो सच था।
1: मुझे लगता है पहले तुम्हारे झूठ ने जीना मुश्किल किया था और अब ये सच बोलना नई मुसीबत पैदा करेगा।
2: अरे तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ।
1: लो एक इसने और परेशान कर रखा है।
2: कौन है?
1: पड़ोस में है नई किराएदारनी, हर समय कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। बस मुझे तो एकदम चुड़ैल लगती है। हाँ
2: मैं खोलूंगा दरवाजा।
6: आओ आओ बहन, कैसी हो?
7: ठीक हूँ।
6: कैसे आना हुआ?
7: जी वो क्या बताऊँ, चीनी खत्म हो गई थी सो।
6: कोई बात नहीं, ले जाओ ना फिर, शर्माना कैसा है। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ।
2: आप तो, मेरी वाइफ ने कहा कि आप एकदम चुड़ैल दिखती हैं।
6: हैं?
2: पर आप तो
7: क्या, उसने मुझे चुड़ैल कहा?
2: हाँ हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही।
7: उसकी ये हिम्मत मुझे चुड़ैल कहती है? हाँ। एक कटोरी चीनी क्या मांग ली, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी।
2: उसने ये भी कहा था कि दिन भर कुछ न कुछ मांगती रहती है।
7: ऐसा कहा उसने?
2: हाँ।
7: ठीक है, आज के बाद मैं कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। समझती क्या है अपने आप को, बड़ी आई चुड़ैल कहने वाली, इसे तो मैं देख लूंगी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, चली गई। कमाल है, सच किसी से बर्दाश्त क्यों नहीं होता है।
1: लो बहन ये चीनी, ये कहाँ चली गई?
2: चली गई,
1: लेकिन चीनी तो उसने ली ही नहीं।
2: डालिए यार, तुम भी कमाल करती हो, अच्छी भली औरत को तुमने चुड़ैल कह दिया।
1: तो क्या तुमने उसे,
2: तो क्या करता?
1: हे भगवान, ये इंसान कभी हम सबको मरवाएगा।
2: क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या?
1: नहीं तुमने नहीं, गलत तो मेरी किस्मत ने किया जो तुमसे मिलवाया।
2: तुम भी कमाल करती हो, तुमने कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया।
1: तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो।
2: ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारी कसम खाई है।
1: मैं तुम्हें कसम से मुक्त करती हूँ।
2: सच?
1: तुम्हारी कसम।
2: देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया।
1: ये क्या है?
2: बिस्किट। अरे अरे सूंघो मत, खाओ खाओ।
1: लेकिन ये ऐसे कैसे हैं?
2: साहब ने मंगवाए थे ना, थोड़े से तुम्हारे लिए भी ले आया।
1: लेकिन ये तो कुत्ते के बिस्किट हैं।
2: अब वो
1: आखिर आ गए ना तुम अपनी पुरानी हरकतों पर।
2: क्या करूं, तुमने कसम से मुक्त जो कर दिया।
1: चलो ठीक है, पर अब ढंग से रहना।
2: डार्लिंग सच बताऊं?
1: चुप, वरना ये कुत्ते के बिस्किट सारे के सारे तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी।
2: ओह

अभी आप सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत झलकी रब झूठ ना बुलाए। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में SS मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
9: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
9: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
10: खुफिया ब्यूरो की एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग
0: साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड

0: मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत।
2: ये दुनिया,
1: ये आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम हीर रांझा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के अंतर्गत दर्द भरे गीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM बैंड 103.7 MHz पर। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है जयदेव, फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: किताब हो।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: से किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

बैजू बावरा फिल्म का ये गाना भी शास्त्रीय रचना पर आधारित है।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952, फिल्म आन।

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो रंग लो
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है जैसे

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सवेरे 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी।